0: And also the devils of Jinn.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्स से जो बाकियों को लगती है।

0: जी हाँ जी, काला काला चश्मा। लेकिन आज धूप नहीं है, चश्मा पहनने का क्या फायदा। मंगल की गोरी गोरी से सुबह।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: साउथऑल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथऑल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथऑल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner Leica Radio.
2: हमारी रक्षक है वो।
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
3: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
5: यस, वी आर इन द फाइनल। आई नो, आई स्टिल कांट बिलीव इट, वी आर एक्चुअली गोइंग।
6: फ्लाइट्स बुक्ड, टिकट्स सॉर्टेड, बट हैंग ऑन, हाउ आर वी गोइंग टू यूज आवर फोन्स ओवर देयर? वी विल नीड देम फॉर टिकट्स, मैप्स, फोटोज, and obviously sending the celebrations home.
7: Simzy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
7: Come on, let's go win this.
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: जो होगा देखा जाएगा,
1: जादू कर जाएगा,
0: मगर जादूगर तो जादू कर जाएगा,
1: समझ नहीं आएगा।
0: लेकिन आज का रिडल सबकी समझ में आ जाएगा।
1: मुश्किल करते सबका जीना,
0: नहीं तो
2: नहीं तो
1: जादू कर जाएगा।
0: ये है लाइक रेडियो गेटर मैनचेस्टर, वेलकम टू लाइक रेडियो ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर हडर्सफील्ड एंड द लीड्स। ट्यूसडे मॉर्निंग गीत नाम करेंगे गुलाम अली भाई आपके और शमीम बानो बेगानी आपके।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India yani ke Yono SBI mobile app ke zariye aap ऑनलाइन या फिर इनकी ब्रांच में जाएं और अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं। आज के रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीस 127 रुपए 15 पैसे।
3: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। दिस इज लाइका रेडियो।
2: लाइका रेडियो
3: ग्रेटर मैनचेस्टर। लाइका रेडियो,
0: लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। वेलकम टू ब्रेडफोर्ड, वेलकम टू Leeds, Huddersfield, Yorkshire and the Midland. DAB Deep Radio के जरिए भी एकदम साफ और शफाफ आवाज, क्रिस्टल क्लियर आप हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन likeradio.com पे, अपने मोबाइल ऐप पे, एंड्रॉइड पे। सबसे पहले प्रोग्राम की इब्तिदा रब जलील के बाबर का नाम से, जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। सुनते कानों और काम करते हाथों में हूँ आपका मेजबान इब्न ताबिर। 07703403020 पे आप हमें खत लिखेंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और आज का रिडल जो मैं पाप से पूछने वाला हूं उसका जवाब देंगे। एंथनी भाई ने हमारे आज स्टेटस को लाइक किया है, हमने अपना स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे यहाँ आपके इस नंबर पे जो हमारा मोबाइल का नंबर है, ये हमारे स्टूडियो का लाइक रेडियो का 07703403020। अच्छा जी, आज का रिडल ये है, बाकी बातें होती रहेंगी और आज के ये प्रोग्राम की कोई खास रूपरेखा नहीं है। हमारी डायरी के पन्ने पे आज कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल खाली है, लेकिन आज 22 सितंबर है। अगर आपके कोई इवेंट हो रहा हो, आप में से किसी की बर्थडे है, जन्मदिन है या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप जानते हैं मैं तो किसी को बताता नहीं हूं। वो कौन सा परिंदा है, पक्षी, जी हाँ, किन लोगों को परिंदे पसंद है? जिन्हें पसंद है उनको इसका जवाब जरूर आता होगा कि वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पांव होते हैं। लो कर लो बात, ताबिश बिना बताइए वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पे पांव होते हैं।
3: इवन एट ताबिश ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
0: प्रोग्राम के पहले हिस्से का ट्यूसडे मॉर्निंग पहला पाकिस्तानी सॉन्ग, गुलाम मोहिउद्दीन और बाबा शरीफ की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म, बताओ भला

0: तकते रहो
1: तकते रहो
2: Like a Radio।
0: कहते हैं कभी कभी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और यहाँ ताबिश से भी ज्यादा जहीन उसके लिस्नर हैं। जी हाँ, ये फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत नहीं थी, सही कहा फरीद भाई आपने, इस फिल्म का नाम था शरारत। हाँ, बड़ी उम्दा अपने वक्त की बहुत खूबसूरत फिल्म थी। गुलाम मोहिउद्दीन, अदाकारा मुमताज और मुनव्वर जरीफ का उस फिल्म में औरत का बनना, क्या फिल्में थी, क्या दौर था, क्या म्यूजिक था, क्या मुसीकी थी, क्या गुलूकार थे। बिल्कुल ठीक कहा फरजाना बहना आपने। वारिंगटन में हमारे साथ आज एंथनी भाई हैं जी। एंथनी भाई ने हमारे स्टेटस को लाइक किया, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद भाई नेल्सन में इतनी जल्दी जल्दी मेरे रिडल के जवाब आने शुरू हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था। लंदन में सायरा, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, जवाब सही है या गलत है इसका तो मैं अब इतनी जल्दी तो अभी आपको नहीं बताऊंगा ना, लेकिन बहरहाल आप शांत रहिए, सब्र कीजिए। प्रोग्राम की अभी शुरुआत है, प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आज के मेरे रिडल का जवाब क्या था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, इस बहाने आप कम अज कम मुझे सुनेंगे, प्रोग्राम को सुने और बताएं कि आपको आज के हमारे प्रोग्राम का जो म्यूजिक का फॉर्मेट है वो आपको कैसा लगेगा। हाँ, खालिद महमूद भाई नेल्सन में हमारे साथ हैं, आपको शुक्रिया। वहीं पे वहीद इकबाल भाई बर्नले में, नौशाद अली भाई, जाहिद अब्बास भाई, अब्बास भाई सिर्फ अब्बास, और जाहिदा साजिदा सुब्रो माफी चाहते हैं, और खुशबू हमारे साथ हैं जी प्रेस्टन में, और बरी में हैं चंदा हैं, बरी में लैला हैं, बरी में हमारी बहनें निगत हैं, और वहीं पे होते ही अमन गजाला जी भी ऑस्टिन में हैं, माफी चाहता हूँ रॉजडेल में हैं, और वहाँ होते हैं अदनान, लंदन ही में इम्तियाज भाई हमारे साथ हैं, और युगेश भाई खुश आमदीद, जहीर हमारे साथ हैं। जहीर तुम्हारी फरमाइश लाइन अप है।
2: दिस इज लाइक अ रेडियो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
4: Get it in, but it might be for a few days. There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
10: Southall Travel can take you there. Carrefour Travel. Auto protected.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
11: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल सेल्स एट laikamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 01612508222 दैट इज 01612508222 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन
14: 90s throwback plays now.
15: Like a radio.
0: Welcome back. और अब है हमारे साथ कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति. फिल्म का नाम दिलबर. और ये गाना जा रहा है रॉक्सडेल में. अदनान तुम्हारे पास.

0: एक बार।
1: झूठा ही सही भाई, झूठा ही सही। कहते हैं जो भी बोलो मीठा बोलो यार। भाई जहीर, बहुत अच्छी फरमाइश थी तुम्हारी, मजा आ गया। अब हम वापस आते हैं आपके पास 11 बजे की खबरों के उस पार।

प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के बैक टू बैक दो गाने, मगर तीसरा गाना एक तमन्ना, एक छोटी सी आशा, मिनी मिनी की आवाज, क्या गाना नाम है भाई।

0: वन ग्राम सोने का भाव आज है 38,850 रुपए।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट heartyhanks.com। Like a radio. Like a radio.
0: जी हाँ, एक लाइव बीट थी, जरा मेरी नजरों से ओझल हो गई थी। ब्रांड न्यू गेम शो शुरू हो रहा है इंडिया के टॉप वन हॉस्टेस बाय अनिल कपूर। जी हाँ, एक शो है ये। इस शो को देखना मत भूलिएगा स्काई टीवी पे ऑन अपने ऐप के जरिए। और इसे पेश कर रहे हैं जॉय हॉटस्टार। डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें हॉटस्टार को अपनी ऐप पे और देखिए रोजाना 8 बजे शाम को। एवरी वीकेंड पे माफी चाहता हूँ, रात के 8 बजे आप देख सकेंगे अनिल कपूर को होस्ट करते हुए इसको।

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट
1: और इस हफ्ते की पॉडकास्ट नंबर 34 लाइक एक्स्ट्रा पे जाके हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। इस शो को इसे होस्ट कर रहे हैं दीप राजा और जिस मौजू पे ये बात कर रहे हैं वो है जी मॉडर्न हरासमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इस पे बात हो रही है। दीप राजा ने बड़ी गहरी गहरी बातें और सवाल पूछे हैं इनसे, जरा देखिएगा इसको मॉडर्न हरासमेंट।
0: लाइक एक्स्ट्रा ये है लाइक अ रेडियो
2: South or Broadway to the London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Sardi ka mausam apne saath bahut sari masti aur khushiyan lekar aata hai aur ye waqt yaqinan aap apni family ke saath guzarna chahenge. Lekin ye mausam apne saath flu, RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन्स मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन। कौन और कैसे इन वैक्सीन्स को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy
5: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: At the Gorga Pianda Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. A Like a Radio classic plays now. Now.
5: क्यों ही तुम मुझसे बात करती हो?

0: बात ये है कि इंसान को कोई भी काम करना अगर चाहिए तो वो दिल से करे, मन लगा के करे, और ऐसी खामोखा बातें नहीं करनी चाहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी योनो SBI वालों को पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाए ऑनलाइन या फिर किसी ब्रांच में जाए। आज के रेट 127.10 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
0: जी हाँ, मैं कह रहा था कि कोई भी काम खामखा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जैसे इस गाने में बड़ी प्यारी बात थी, क्या जबरदस्त ये अंतरा था ऐसा कि यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई और इरादा है। नसीर भट्टी हमारे लिस्बन में होते हैं रोजाना, रफी साहब के बहुत बड़े भक्त हैं, और यही गीत नाम करेंगे कजूरी जी आपकी भी। कहते हैं तुमसे मोहब्बत इतनी है कि अब दुआ भी मांगू, तुमसे मोहब्बत इतनी है कि अब दुआ भी मांगू तुम्हें, सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है। लाहौर से ताबीर आपने ज्वाइन किया है हमें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और वो कौन सा परिंदा है, हमने ये पूछा है आपसे कि वो कौन सा परिंदा है जो जिसके सर पर पांव होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें जवाब दिए हैं और कुछ अजीबोगरीब जवाब भी आ रहे हैं। नूर आप हमारे साथ हैं, नूर सेंट हेलेंस में हमारे साथ निभा रही हैं। जमशेद चौधरी भाई हमारे साथ हैं जी स्टॉकपोर्ट में, अयाज भाई, भाई जान और नवाज भाई हमारे साथ होते हैं, नवाज चौधरी ब्लैकपूल में। जरीन ने कहा कि मेरा ख्याल ताबिश शुतर मुर्ग हो सकता है। रॉजल से गजाला जबी ने कहा कि ऐसा कोई परिंदा नहीं ताबिश। अच्छा जी, आश्टन में सीमा हमारे साथ हैं, आश्टनी में काशिफ भाई, कैसे मिजाज हैं आपके। योगेश भाई लंदन में हैं, योगेश भाई लीड्स में हमारे साथ हैं जी, कौन भला, मजर भाई, और ब्रेडफोर्ड में तारिक अजीज भाई। आसिया बहन हमारे साथ हैं रॉजडेल में, रुखसाना आमिर काम पे पहुंच चुकी, इमरान राणा कैसे मिजाज हैं इमरान आप ठीक हो। और अब लीजिए जनाब पाकिस्तानी सॉन्ग पहुंच रहा है। मैडम नूरजहां का जिक्र था कल और परसों में ना, ये एक सॉन्ग रह गया था बड़ा उमदा पाकिस्तानी, मैडम नूरजहां का।
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। Listen live and listen back to your favorite shows.

के दूसरे हिस्से के प्रोग्राम के दो बैक टू बैक गानों में पहला सॉन्ग किशोरदा का था, जवानी के दिन याद आ गए गुलाम अली भाई आपको। खालिद भाई ने कहा मेरा फेवरेट सॉन्ग, जमशेद चौधरी भाई आपके भी नाम। और अब ये जादू और नशा लेके जाएगा 12 बजे की खबरों की जानिब।

ये तोहफे हैं जो गैरों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो गैरों से मिले हैं, हमें अपनों से कोई गिला नहीं। सज्जाद अली की गजल इतने लोगों को पसंद आई मुझे अंदाजा नहीं, मुझे मिल नहीं रही थी कोई गजल। और खुर्रम भाई, खुर्रम रहमान सागर भाई हैं, उन्होंने मुझे गजल भेजी लेकिन बहुत लेट, मैं इसको लाइनअप कर चुका था। रहमान भाई फिर सही, कल सही, परसों सही। रिजवान जमट कहते हैं, वाह ताबिश भाई मैंने रास्ते में गाड़ी रोक ली। थैंक यू रिजवान, तुम्हारे नाम भी हुई है गजल। कहते हैं साहब के अजीब मकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, अजीब मकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे हम तो, सुकून ढूंढने निकले थे नींद भी गवा बैठे, हमें गैरों से कोई गिला नहीं। वो कहते हैं कि फितरत से हूं मजबूर मैं।

0: और आज की हमारी जादू भरी आंखें, सुबह से बात चली थी जादूगरी की, फिर न जाने बात कहां जाके ठहरी। जिंदगी को मुख्तलिफ पहलुओं से इंसान देखता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी बहुत कलील है। हाँ, एक शब्द मुझे नहीं मिल रहा था। कहते हैं मुझे तुम्हारी मोहब्बत का कोई खूबसूरत इख्तिताम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का कोई भी खूबसूरत मकाम इख्तिताम नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और तुम्हारे साथ गुजरी हुई पूरी जिंदगी चाहिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Right, जनाब।
0: और करेंसी रेट एक बार फिर से आपको बता दूं, US डॉलर 1.33, 1.33 इंडियन रुपीस में 128 रुपए 24 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस में 371 रुपए 52 पैसे, बांग्लादेशी टका 165 टका 22 पैसे, श्रीलंकन रुपीज 443 रुपए 4 पैसे और अफगानी रुपीज 86 रुपए 92 पैसे।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester.
3: LIKA Radio.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और एक बार फिर से Southall वालों का पैगाम, कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स देते हैं दुबई के मामले में। दुबई के लिए बहुत सारी मराहत है और अच्छे ऑफर्स के साथ टर्म्स कंडीशंस कहते हैं अप्लाई होंगी, एट ऑल प्रोटेक्टेड है और नंबर इनका है 02085748410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, LIKA Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: जी हाँ जी, और अब 44 रुपए इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हमारे आफ्ताब। फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है। हाँ, यही

0: क्या बात है, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज आफ्ताब। आफ्ताब हमारे इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक है और ये गीत नाम करेंगे हम मलेका के।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: चलिए जनाब एक बार फिर से आपको बता देते हैं चिंता की कौन सी बात है। आज सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 104.49 पेनिया यानी 104.49 पेंस पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज है 38,850 रुपीज।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. Leica Radio.
0: Good afternoon. Program ke third and final hour ke aadhe hisse ke baad live read. दक्षिण मशहूर खिलाड़ी यानी कि कपिल शर्मा फैम, आपको पता है सुनील ग्रोवर आ रहे हैं, आप भूल जाते हैं इसलिए मेरा काम है रोजाना आपको बताना है। OVO अरीना वेम्बली में ये पहुंचेंगे थर्सडे को 29 अक्टूबर को, उसके बाद ये आएंगे लेस्टर मिटोली अरीना में, सैटरडे का दिन होगा और तारीख होगी 31 अक्टूबर। टिकट के लिए कहते हैं कि AXS पे जाइए, इवन ब्राइट एंड टिकट मास्टर पे आप जाके जल्दी से अपनी टिकट बुक कराइए। ये हमारे रेडियो पार्टनर है लाइगर रेडियो के, आपको बताएं। और एक और बता देते हैं आपको लाइव रीड, कोई मसला ही नहीं। कहते हैं कि रागासन रायका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल एट लाइका रेडियो डॉट कॉम।
1: लाइका रेडियो।
2: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
3: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
4: Use your brain now. Play the game now.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. 11
11: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।

0: से निराला। Master Pani Puri or Pani Puri ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk.
4: राइट जनाब, वेलकम बैक। और अब एक बहुत ही खूबसूरत गीत, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें, फिर वही कहूंगा वीसीआर का जमाना, साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज। फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया। ऐसा कोई ना कोई एक काम इंसान को जिंदगी में ऐसा जरूर करना चाहिए कि जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको दुनिया में याद रखें। भाई ये सॉन्ग हमसे बड़ी पुरजोर फरमाइश की है आसिम, तुमने ओल्डम से।

0: Mika Radio.
1: पर्वतों के पेड़ों पर शाम का सवेरा है। कजूरी जी ने आज बहुत बरसों के बाद एक छोटी सी शिकवा किया है कि ताबिश इतना लेट रफी साहब का गाना लगाया आपने। मेरे ख्याल है मैंने एक सॉन्ग या दो सॉन्ग आज और भी प्ले किए हैं, आप भूल गई शायद। इस बात के गवाह हैं नसीर भट्टी लेसबन में। नसीर, मैंने लगाया था ना एक और सॉन्ग भी, एटलीस्ट कम से कम दो गाने तो मैंने आज लगाए रफी साहब के। आप कभी कहती नहीं, आप कभी फरमाइश नहीं करती, तो मैं क्या करूं। बहरहाल जी, रॉबर्ट भाई की तरफ से ये था, खास तौर पे गुलाम अली भाई आपके लिए ब्लैक वन में। खजूरी जी, आपके भी नाम भी हो यही गीत। फिल्म का कितना खूबसूरत नाम है शगुन, कितना प्यारा नाम है फिल्म का। और इसी गीत को फरीद भाई आपके लिए भी कहा रॉबिन भाई ने। रॉबिन भाई थैंक यू वेरी मच। छोले और पराठे खा रहे हैं गुलाम अली भाई, बहुत ज्यादती है ये ईमान से। उस्मा हमारे साथ है लंदन में। उस्मा थैंक यू वेरी मच साथ निभाने का, आप उठ गई। गुड मॉर्निंग, लंदन ही में हमारे साथ थे जनाब, अपने इम्तियाज भाई थे और ताहिर सिद्दीक भाई, योगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा रिडल क्या था साहब? पूछ पूछ के ताबिश परेशान हो गया है। किसी ने कहा चमगादड़, किसी ने कहा शुतुरमुर्ग। मैंने पूछा था कि वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पांव होते हैं, तो कई लोगों ने कहा भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप ताबिश भाई, सबके होते हैं पांव सर, क्या है, क्या कौन सा ऐसा वाला परिंदा है कि जो जिसके सर पर पांव होते हैं, बताओ यार। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सबने। अब किस किस का नाम बताऊं मैं आपको, तमाम सब परिंदों के पांव सर पर होते हैं, ये है जनाब जवाब। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इजाजत चाहिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बुध की सुबह, और फी अमान अल्लाह। और
0: इबन ताबिश रोलिंग आउट योर फेवरेट हिट्स अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट, दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: खुदा हाफिज और फी अमान अल्लाह और खुदा पामान। फिल्म का नाम है साहब लूट मार।

0: Sevecisin ki avaz.
1: Kısa dünya çahiye.
2: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
0: Please like radio. और इसके साथ ही The Magazine Show में आपको दो गीत हमने सुनवा दिए. And back to back तो फिजा है. और आज की फिजा तो इंतहाई खूबसूरत है. Sunshine है, blue sky है, मौसम बहुत अच्छा है. ये मौसम 2002 में भी होगा तभी ये गाना लिखा गया. सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में आपने सुना तो फिजा है. टाइटल ट्रैक था 2000 की फिल्म का. और उसके बाद फिर और क्या चाहिए अरिजीत सिंह जरा हटके जरा बच के 22-23 पर पहुंच गए हम इसी गाने को लेकर और प्ले करके. सभी सुनने वालों को वार्म वेलकम है, खुश आमदी. मौसम का असर हुआ है कुछ अच्छा लग रहा है. मौसम बहुत दिनों से इतना बुरा तो है भी नहीं, लेकिन सिर्फ ये है कि जब सूरज निकलता है तो बहुत से लोग यही समझते हैं. और समेत मेरे ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास कुछ बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ हैं, लेकिन नहीं, सूरज के साथ ही आपका मूड बेहतर होता है. आपको लगता है आप दुनिया में रह रहे हैं, यानी ये सुबह है, ये दोपहर है, ये शाम है जब सूरज ढलता है. वरना फिर एक सा मौसम, एक सा रंग, बादलों का रंग, ग्रे रंग और पानी का रंग. जैम पैक प्रोग्राम लाइक ऑलवेज और बहुत से अच्छे गाने आपके लिए प्ले करूंगी. अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 07703403020.
2: The Magazine Show with Robina Khan.
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities.
3: A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026. 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
3: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
6: Hamari rakshak hai wo.
7: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
8: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
7: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.
9: No, sorry mate.
10: No, we don't have that part.
9: Have you tried down the road?
11: We can get it in, but it might be for a few days.
12: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.

0: The Golgapian da Pani.
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
5: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
6: Okay, help's on its way.
7: Grab my hand!
8: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
10: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या?
11: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
12: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है. दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो. विजिट कीजिए tarikhalal.com.

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: This is Leica Radio, Greater Manchester, Bradford, Huddersfield and Leeds.

0: Radio.
1: कितना अच्छा इत्तेफाक है कि कविता और कवि, कवि यानी कि शायर, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, और लकीली या इत्तेफाक से मौसुफ का नाम भी कविता है, तो बात जो है वो ठहर गई। अच्छा चलिए, ये तो होता ही रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इत्तेफाक हो जाता है, और शायरों के साथ तो बहुत ही होता है कि जब आपको कोई एक लफ्ज़ ढूंढना होता है उसके साथ कोई लफ्ज़ ज़रूर मिल जाता है, काफ़िया रदीफ जिसको कहते हैं। सो एनीवेज, अभी आप से मैं ये पूछना चाहूँ, और आज तो बहुत ही ज़रूरी है ये बात करनी, कि अगर आपको अपने दिन के बारे में उसको लेबल करना हो, यानी आपका दिन कैसा गुजर रहा है, सादी बात करती हूँ, आपका दिन कैसा गुजर रहा है, तो अगर एक लफ्ज में आप बताना चाहें तो क्या कहेंगे? अगर आप एक लफ्ज में बताना चाहें, अगर आपको मुश्किल लगता है लफ्ज लिखना, अगर आप वॉइस नोट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आज के दिन के लिए तो बहुत आसान है। आई नो आज का दिन बहुत, क्योंकि जब ब्राइट होता है और ड्राई होता है और मैनचेस्टर का वो कन्वेंशनल सा वेदर नहीं होता, तो आप ज़रूर बहुत जल्दी से बता सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है। लेकिन फिर भी आज के मौसम के बाद भी, यानी कि इतने अच्छे मौसम के होते हुए भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दिन कैसा गुजर, तो आप क्या कहेंगे? और नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ लेके चलूं, यानी टेस्टी सॉन्ग की तरफ।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: I think I'd make all Kumar Sanu ki awaaz hai for the film Sanam 1997 ki film. So ye tha 90s throwback. Holi holi jayenge abhi hum Pakistani track ki taraf bhi. Just soch ke rakhiye kaun aaj hoga jiski awaaz main aapko sunwaungi. Bas wo aise aaj ke mausam ki tarah khoobsurat hai.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
0: So you like a radio? And today we have asked you a question. पहले मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आपको चंद लफ्ज़ दे दूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके अपना जो है फैसला होना चाहिए कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बस उसका फील होता है कि मुश्किल लगता है कि अच्छा इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है. और आपसे सिर्फ यही पूछा कि अगर आपको आज के दिन के बारे में एक लफ्ज़ देना हो तो वो लफ्ज़ क्या होगा. और जो मैंने आपको थोड़े से चॉइसेस देनी थी, अच्छा है, बुरा है, यानी सिर्फ बुरा, अच्छा, दरमियाना, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, यादगार है, या फिर ये आम सा दिन है. अब आपको क्या फील हो रहा है, इसलिए मैंने ये सारे लफ्ज आपको नहीं बताए, अब बता रही हूँ. लेकिन आपके दिल में क्या लफ्ज है, या आज आपको कैसा फील हो रहा है, आज का दिन कैसा है. आपने लिखा है कि वेरी लकी डे टू मी टूडे, आई गॉट सम गुड न्यूज एंड वेरी हैप्पी सेम एज वेदर. फैंटास्टिक जी. तो इसमें जब इतना अच्छी चीजें हो ना, तो उसमें तो लोग मुबारक देते हैं. मुबारक हो जी आपको. फरजाना नसीब, आपने ऐसी कोई बात तो नहीं लिखी, लेकिन आपने कहा दो ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा मांगते रहो. यानी फ्री फंड वाला काम जो है वो ठीक है. ना हमारे कोई खर्चा हो, ना हम किसी का खर्चा करवाएं, ये वो वाला स्कूल ऑफ थॉट है. एसवी सजाद, आपने बस मैसेज किया है गुड आफ्टरनून का, शुक्रिया. एंड खान, आपने लिखा है बिजी एंड फील गुड एंड के. वाजी वाह. जमशेद चौधरी, आपका मैसेज थोड़ा सा तवील है लेकिन पढ़ने के लायक है, लिहाजा मैं पहले आपको एक गीत सुना लूं. अब आपने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि आज की प्लेलिस्ट क्या होती है, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता कि मैं नाज़िया हसन की आवाज प्ले करूं और आपको पसंद ना आए, वही खूबसूरती.
1: Listen live and listen back to your favorite shows.

0: मौसम की तरह खूबसूरत आवाज, और ऑफ कोर्स अभी हमें इनकी शक्ल भूली थोड़ी है, नाजिया हसन की हमेशा जहन में आती है गाने के साथ साथ.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको एक्सचेंज रेट में मिलेंगे 128.24 इंडियन रुपीस. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. द मैगजीन शो विद रुबीना खान. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: South of travel 7 days a week. South of travel 24 hours a day. We're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner Leica Radio.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, राग हसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragahasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, राग हसन.
9: आई कांट वेट फॉर आवर हॉलिडे. See, no work.
10: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
9: Not with Simzy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock, and you're ready in just 3 minutes.
9: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
10: Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: Get that Euro Millions feeling with this Friday's £107 million super jackpot. So super, you've got to dance. So let's dance like never before. Euro Millions from the National Lottery. It could be you.
12: Estimated jackpot. Rules apply. 18 plus.
13: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
14: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Leica Radio Sales on 0161-250-8222 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
15: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ share करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.

0: गाने थे चौहान की आवाज और उसके साथ शान की आवाज शादी नंबर 1 2005 की फिल्म और इससे पहले माशू का गीत आप सुन रहे थे कॉकटेल 2 2026 की फिल्म से गीत लिया राघव चैतन्य रॉके ऐसी आवाजें आपने सुनी किसे गिनावर में खुश आमदीद थैंक यू
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: कहते हैं कि मजा ही आ गया, तेरे इश्क न छाया, थैया थैया। लखविंदर वडाली की आवाज हो, अरफाना कलाम हो, नचना ते पै जांदा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
1: Like a radio.
0: जी बात हुई थी कुछ मैसेजेस की, और आज आपका दिन कैसा जा रहा है? और ज्यादातर अच्छा जा रहा है, मसरूफियत भी है, गुड न्यूज भी है। जमशेद चौधरी आपने लिखा है, आपने असलाम लिखा, वालेकुम असलाम जी। और आपने लिखा है कि आपके प्रोग्राम को सुनते सुनते दिन गुजरता है, आप क्या बात कर रही हैं, या आपने कौन सी स्टोरी सुनानी है, कौन सी खबर सुनानी है। ओए होए होए, हमारे पीछे CIG लगी है। क्या क्या हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को ना सिर्फ गीत पसंद आते हैं, और गीत तो आप अपनी मर्जी के कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में जो प्लेलिस्ट है वो अच्छी लगती है, और ख़ास तौर पे हमारे जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को आप पसंद करते हैं। सारी मेहनत तो उधर लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, वो एक एक दो दो मिनट की कहानी नहीं होती या खबर नहीं होती, उसको इतना मुख्तसर करना पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है। एनीवेज, और अभी हमें मलिका आपने मैसेज किया है, और आपने लिखा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो मलिका होता है ना, एक तो लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं मलिका, ठीक है, एक कहते हैं मलिका, एक है ना ए को जरा सा उसको लंबा किया जाता है, और एक एक पर्शियन मेरी दोस्त है वो कहती है मलिका, बड़ा अच्छा लगता है उसकी जुबान से मलिका। तो आपको कैसे लोग मिलाते हैं, वॉइस नोट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं सुनूं कि आपके नाम की सही प्रोनाउंसिएशन है क्या। तो कमर्शियल ब्रेक।
1: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Function rakha hua hai.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.

ही खूबसूरत गीत जो कि हाई रोटेशन पर है, श्रेया घोषाल, निहाल ठाकुर की आवाजें हैं और ये प्रेम मौलिया फिल्म नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी। Can't wait to see it. Honestly, beautiful track.

0: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: कुछ मोल तोल की बातें, actual मोल तोल की बातें हो जाए। ये प्रेम मोल लिया, बड़ा ही खूबसूरत गीत, लेकिन अब आपको करेंसी एक्सचेंज रेट बता देती हूँ। जबकि आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में आज यूएस डॉलर मिलेंगे 1.33, इंडियन रुपीस 128.24, पाकिस्तानी रुपीस 371.52, बांग्लादेशी टका 165.22, श्रीलंकन रुपीस 443.04, अफगानी 86.92।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप बहुत ही खूबसूरत गीत सुन रहे हैं। फिल्म का नाम उम्मीद थी। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन गरम चाय की भी क्या बात है।
1: खबर पर नजर विद रुबीना खान।
0: तो एहतियातन जो चाय थोड़ी सी मैंने आज पी है, इस वक्त पी है, क्या मजा ही आ गया। और ऐसा लगता है कि शायद अब मैं खबर को पढ़ ही सकूंगी। एनीवेज, बात यह है कि आज की जो खबरें हैं वो इत्तेफाक से दो खबरें जो थी वो रिलेटेड थी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक। एक तो कुछ उसके अगेंस्ट अगेंस्ट जाती है, यानी आपने सुना ही होगा हाल ही में एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें एक यूके का जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक एआई से जो एआई की अदाकारा है और एक फिल्म पूरी बनी है एआई के एक्ट्रेस पर, उनसे वो इंटरव्यू कर रहे हैं। अब तकरीबन वो जब इंटरव्यू हो रहा है तो 15 मिनट्स तक एआई एक्ट्रेस जो है वो बोल रही है, उसके बाद अचानक वो चाइनीज बोलने लग पड़ती है। अब सब हैरान हो जाते हैं, वो देखने वाला मंजर है जब गेस्ट जो है वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रही है, क्योंकि बाद में उसने वापस इंग्लिश में आई एआई की एक्ट्रेस और उसने कहा कि कभी कभार उसकी तारें उलझ जाती हैं। मेरे गले की तारें भी कभी कभी उलझ जाएंगी आज और शायद कल भी, और फिर जाके कहीं ठीक होंगी। तो एआई की तारें उलझ गई और अब ये क्लिप जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक खबर जो एआई के फायदे की है, या ऐसा कहना चाहिए आजकल रोबोट्स का जमाना है, सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन रोबोट्स को भी अकल कहाँ से आएगी, वो इंसानों से ही लेंगे ना। तो इंडिया में ख्वातीन घरों के काम की वीडियोस बनाने शुरू कर दी है। वो अपने माथे पर इस तरह से अपने मोबाइल को फिट करती हैं कि वो जो काम कर रही हैं उसकी वीडियो बनती रहती है, और ये वीडियो जो है वो सेल होती है और वो अपने तमाम कामों की डिटेल जो है वो इस तरह से उनको बता देती हैं और उनको फी घंटा $3.12 मिलते हैं। सो एआई के काम है लेकिन इंसानों से जुड़े हैं जी।
1: इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। Listen live and listen back to your favorite shows.
0: अहमद रुश्दी की आवाज, फिल्म का नाम नसीब अपना अपना। शबनम तो मुझे लगता है इसमें है, लेकिन हीरो कौन है आपको पता हो तो मुझे बताइए।

0: तुम को दे दिया।
1: ये तो एक खूबसूरत ट्रैक था जो आपके लिए पेश किया गया, प्ले किया गया।
2: Like a radio।
1: लेकिन अगर आपको कुछ शेर चाहिए हो जो कि ख्याल से मुतालिक हैं, तो एक से एक बढ़कर बुरा शेर फेसबुक पर मिल जाएगा आपको। यानी आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है। ये तो एक अच्छा जुमला है, एक मिसरा है कि तुझसे गाफिल तेरे ख्याल में गुम, ये तो चल जाएगा। लेकिन और मैंने अभी देखे तो बस समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग इतना वक्त ज़ाया करते हैं। मुझको ख्याल है कि तू मेरा ख्याल है, ए मरकज़े। अच्छा, मरकज़ बिल्कुल डिफरेंट। ए मरकज़े ख्याल, तेरा क्या ख्याल है, आता है तू ख्याल में कितने ख्याल से, तुझको मेरा ख्याल का कितना ख्याल है। पता नहीं इसमें कौन सा आइडिया है, कौन सी फिलोसफी है। ये बिल्कुल इस तरह के शेर पढ़ के मुझे एक दफ़ा मीरा का इंटरव्यू याद आया, जो कि जिसमें वो अहमद फराज के साथ बैठी हुई गज़ल सुना रही हैं कि ए मंजिल बता तेरी मंजिल का, नहीं मंजिल मंजिल से पूछती है तेरी मंजिल है कहाँ, इस तरह की बातें। और फिर मंजिल ही को लेके वो घुमन फेरी लगाई गई, कोई पता नहीं चला कि मकसद क्या है बताने का। सो गीतों में कुछ शायरी में काम की चीज होती है और कभी कभी बहुत ही बेकार।
2: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
3: Leica Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: गोल्ड रेट आपको बता देते हैं, आज 24 कैरेट और 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस है 104.11।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com।
1: Like a radio। सो जी, लाइक रेडियो आप सुन रहे हैं और द मैगजीन शो आपके लिए एक पैगाम कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए कि एक नया ब्रांड न्यू गेम शो शुरू हो रहा है और आप उसको देख सकते हैं। गेम शो का नाम है इंडिया के टॉप 1%, और ये शो होस्टेड है बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। सो डाउनलोड और सब्सक्राइब करें टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
1: जी, अनदर पॉडकास्ट और उसका टाइटल है मॉडर्न हैरेसमेंट, होस्टेड बाय दीप राजा, और दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑन ऑफ IIW एंड ज्ञाति एशियन ISO, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट हैं। और मॉडर्न हैरेसमेंट पर इन्होंने बात की है, एक्सप्लोर किया जा रहा है कि मॉडर्न हैरेसमेंट है क्या और क्या ये वर्क पर, फैमिली में या जब भी कोई बात होती है तो उसमें ये नजर आती है। इस अहम पॉडकास्ट को सुनने के लिए लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
2: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर, द मैगजीन शो विद रुबीना खान।
3: लाइक रेडियो।
4: South Old Broadway to the London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती।
6: इसे हमेशा याद रखना।
7: काश कोई आ जाए।
2: Catch the brand new show, Sayoni, starts Wednesday the 23rd of September at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
0: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: अच्छा राजनी कौर हरी हरन की आवाजें आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम जुदाई था। नॉर्मली बल्कि कहना चाहिए 99% जो हमारी 90s की फिल्म्स हैं वहां पर जो गीत हैं 7-8 मिनट तो कहीं नहीं गए। बहुत लंबे ड्यूरेशन के सॉन्ग्स होते हैं और ये गीत जो है इत्तेफाक से और है भी जुदाई का सॉन्ग आप क्या 7 मिनट का सुनेंगे, उस वक्त तक तो आपका दिल बेचारा खून खून हो जाएगा, हार्ट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स का था, लेकिन क्या ही ब्यूटिफुल इफेक्ट और इम्प्रेसिव सॉन्ग था। सॉन्ग तो बहुत से हैं लेकिन आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
1: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें इंडिया मनी सेंड करने का प्लान कर रहे हैं तो आज आपको 1 pound के एक्सचेंज में 128.24 इंडियन रुपीस मिलेंगे। और साथ ही ये बता दूं कि डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
4: Dil ne ye kaha hai dil se
5: bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner. Leica Radio Network. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
8: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. Robina Khan. Now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio, Greater Manchester.
0: बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का सेकंड आवर भी अपने इख्तिताम की तरफ है। नेक्स्ट आवर में आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी भी होगी और अभी जो गीत है वो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्वीकार किया मैंने, ये फिल्म का नाम है 1983 की, गीत आप खुद ही सुनिए।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester.
0: किशोर कुमार, लता मंगेशकर।

0: रश्मि या की आवाज थी ये बनारस फिल्म के लिए 2006 की फिल्म। और उससे पहले आप उदय नारायण अलका असली अलकानी अदित्य नारायण गदर 2 के लिए पहला गीत था।
1: The Magazine Show with Robina Khan।
0: सजीव प्रोग्राम के पहले दो गीत आपको सुनवाए और उम्मीद करते हैं आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत बढ़िया तरीके से इंजॉय किया और वाकई मैंने दोनों गीत सुने, मजा आया। पहले ये जो ओरिजिनल ट्रैक है मैं निकला गड्डी लेके, उसके बारे में तो यह है कि एक वक्त होता है कि जब आप गाड़ी लेते हैं या चेंज करते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, तो आपको बड़े मजे आ रहे होते हैं कि अच्छा जी गाड़ी में बैठेंगे, और अब थोड़े ही अरसे में वो सब चीजें बदल जाती हैं। वो नई गाड़ी हो कोई भी हो, आप उसके इतने टू हो जाते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होता। ये जो खुशी इस गाने में है ना, मैं निकला गड्डी लेके, जैसे पता नहीं क्या। और वैसे भी अब दुनिया जो है वो गड्डी से भी आगे जा रही है, तो आगे की तरफ सफर लोगों का चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। बहरहाल जो है उसको तो एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक खबर मेरे पास थी जो कि एज सच सोशल मीडिया पर जो बातें होती रहती हैं, ये एक जनरल बात है, कोई ऐसी खबर भी नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्ट्रेस जो है, नाम बता देती हूँ, सबा कबर, वो इकराजी की तारीफ कर रही हैं। तो उसमें इकरा अजीज ने ये कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपके अल्फाज से मुझे कितनी खुशी हुई है। इसी चीज को मैं बेस बनाकर ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं, इवन आप हमसे, हमें जब मैसेज करते हैं, तो आपके काइंड मैसेजेस का आपको शायद यकीन भी ना आए कि कितना उसका असर होता है या कितनी उससे खुशी होती है। तो डेली या डे टू डे लाइफ में भी जब आप किसी को अच्छा कहते हैं या किसी की तारीफ करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसको आप हल्का शल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दिल जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है ना। दिल धड़कता है, दिल की बिना क्या चीज़ है। लेकिन दिल बड़ा हो जाता है, दिल को अच्छा लगता है। तो अगर किसी के दिल को अच्छा लगवाना है तो उससे अच्छी बात कीजिए, उसको अच्छे लफ्ज़ दें, और इससे उसका दिन भी अच्छा गुजरेगा। आज का दिन आपका कैसे गुजर रहा है ये तो आपने बताया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बताना चाहें तो आपके लिए हमारी सर्विस व्हाट्सएप की बिल्कुल खुली है। 07703403020 पर आप बता सकते हैं। मुद्दसर सजाद, आपको गीत ये बहुत पसंद आया, आपके नाम करते हैं। अयूब साहब, आपने बहुत ही काइंड वर्ड्स कहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
1: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: The Cycle of Love from executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
3: I left behind everything I knew.
2: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
3: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
2: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
5: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood's radio partner, Leica Radio.
6: Jannan. For 15 years, Jannan has been part of your story across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations, and new beginnings. Because style has no age, no background, and no boundaries. 15 years of Jannan for you, for us, for everyone. The Jannan and J. Dot anniversary sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉरपोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: ये है लाइका गोल्ड.

0: फिल्म अभिमान
1: शॉर्ट हार्ट टचिंग स्टोरीज विद रुबीना खान।
0: सो आज की स्टोरी जो है एक बहुत ही मशहूर आदमी के नाम है, और आप सब कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको सिकंदर आजम या अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में ना पता हो। सारे दुनिया उसने फतह कर ली, फतह करता चला जा रहा था, और एक दिन उसका जो लश्कर था, उसकी जो बटालियन थी, वो एक ऐसी जगह पर मार्च कर रही थी, उस तरफ बढ़ रही थी जो जिसको ब्रह्मनों की जमीन कहा जाता था। तो वहाँ के जब दानिश्वर लोग थे या जो विजडम वाले लोग थे या अक्लमंद लोग थे, वो उनको पता चला कि सिकंदर अपनी फौज के साथ उनके शहर की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने घबरा कर हथियार नहीं डाले, वो घबराए भी नहीं। उन्होंने सिकंदर को एक खत भेजा और खत में लिखा कि ऐ बादशाह, अगर तुम दौलत की तलाश में आए हो तो यहां तुम्हें सोना चांदी और खजाने नहीं मिलेंगे। हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, बुर्दबारी डिसेंसी और दानाई या अकल। सिकंदर ने खत पढ़ा तो हैरान हो गया और अपने चंद साथियों के साथ वो पहाड़ की तरफ निकल गया, क्योंकि वो सब लोग पहाड़ों पर रह रहे थे। वहां उसने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। वो लोग जो वहां पर रह रहे थे, ना उन्होंने कोई लिबास शाही पहने थे, ना इनके पास महल थे, ना खजाने थे, बल्कि उनके पास मिनिमम चीजें थी, कपड़े भी उन्होंने मिनिमम पहने हुए थे। तो सिकंदर ने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास ना दौलत है, ना महल है, ना फौज, फिर तुम खुद को इतना खुशकिस्मत क्यों समझते हो? तो वो शख्स मुस्कुराया, उसने कहा बादशाह, तुम दुनिया के मालिक बनने के लिए सफर कर रहे हो, और हम इस बात को समझने के लिए दुनिया की मलकियत आखिर है ही क्या, क्या है मलकियत? सिकंदर कुछ देर खामोश हो गया, फिर इसने पूछा, अगर मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूं जो तुम चाहते हो, जो दौलत वगैरह, और जो भी तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम वाकई हमें कुछ देना चाहते हो तो हमें वो चीजें दो जो तुम खुद हासिल नहीं कर सकते। अब सिकंदर ने चौंक ही जाना था, हैरान होना था, उसने कहा क्या? तो आदमी बोला, वो अकलमंद आदमी बोला कि हमें मौत से निजात चाहिए, हमें बुढ़ापे से आजादी चाहिए। सिकंदर के पास का कोई जवाब नहीं था, वो दुनिया का फातिह थे मगर मौत को शिकस्त देने की ताकत इसके पास भी नहीं थी। तो कहते हैं सिकंदर ने उन लोगों को, उन दाना लोगों को, अकलमंद लोगों को बहुत कुछ पेशकश की कि ये ले लो, वो ले लो। उन्होंने कहा कि इन चीजों की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम इसको वैल्यू ही नहीं करेंगे तो हम लेकर क्या करेंगे, लिहाजा हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये बताओ, तुमने कितनी दुनिया फतह की, और आखिर इंसान अपने साथ लेकर क्या जाता है? दुनिया को फतह करना आसान होता है मगर अपनी ख्वाहिशात को फतह करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। कितनी भी ज्यादा आप फतूहत कर लें, कितना भी ज्यादा अचीवमेंट कर लें, इंसान के पास जो चीज छोड़ के जाता है या जो उसका असल एसेट होता है, वो उसकी कुछ यादें होती हैं या उसका कुछ लोगों के साथ बिहेव होता है, वही याद रह जाते हैं। जो लोग बड़े रूड होते हैं या जो लोग अपने चीज़ों में दूसरों को शेयर नहीं करते या अपनी दौलत में से कुछ लोगों को हिस्सा नहीं देते या गरीबों को नहीं देते, उनको कोई याद नहीं करता। याद तो अभी भी करते हैं सिकंदर आजम को, लेकिन उसने अपना सबक भी लर्न किया और उसने दुनिया को फतह भी किया। लेकिन आप शायद जानते होंगे कि, बल्कि यकीनन जानते होंगे कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा, 30 ईयर्स की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गया था। और उस ज़माने में चूंकि इलाज इतने अच्छे नहीं होते थे, तो उसको एक माइनर सी कोई इन्फेक्शन थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, और वो भी जंगों में कोई एक तीर आके लगा। ये कहने की बातें हैं, बात यह है कि हम इन तमाम बातों को, ये जो स्टोरी भी है रियल में, ये कोई हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ये भी शाहनामा से ली गई है। और उस ज़माने में लोग जो मशहूर लोग थे उनके नाम से कुछ ना कुछ विजडम ड्रॉ करके कहानियों का एक फैशन था और उससे लोग लर्न करते हैं, तो ये वो है, यानी कि ये हिस्ट्री का हिस्सा

0: नहीं है अगर आप सोचें कि ये हिस्टोरिकल सॉलिड फैक्ट है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बता दूं। और इस तरह क्योंकि सच्चाई को जानना, हम अगर मैं फर्ज करें आपको एक बात बताती हूँ, आप किसी दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताता है, असल बात कहीं खो जाती है। हम बात कर रहे हैं 1500 साल पुरानी, अब सोचिए कि कितनी कुछ बदल गई होगी। असल चीज यह है कि इन स्टोरी से हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्या समझते हैं और क्या अपने आप को सुकून देते हैं, मेन ये चीज है।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: दिमाग को सुकून दीजिए। मुझे मालूम है पंजाबी गीत आप सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है।

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: ये आपको गोल्ड रेट एक बार फिर से बता दें, आज 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस है 104.11.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
0: Leica Radio.
1: सर जी, आपको वही तमाम एंटरटेनमेंट की न्यूज़ जो आपको रोज़ दी जाती हैं वो देने जा रही हूँ. संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदसानी लाइव. ये आफ्ताब शिवदसानी आजकल हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी हैं. जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदसानी. और इसके साथ ही सिंगर्स भी हैं अमान त्रिखिया एंड मयूरी पटियाला. संडे 27 सितंबर को आप देख सकते हैं एट लेस्टर्स डी मॉनफोर्ट हॉल. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो. उस्ताद राहत फतेह अली खान परफॉर्म करेंगे. TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फतेह अली खान. अट्रीब्यूट टू अंकल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान. उनकी 30वीं डेथ एनिवर्सरी पर ये लोग आ रहे हैं. राहत फतेह अली खान विद हिज सन. वन डेट ओनली है जिसमें संडे 18 अप्रैल 2027 है एट 202 लंदन. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो. उदित नारायण उनके बेटे आदित्य नारायण लाइव परफॉर्म करेंगे. और ये परफॉर्मेंस होगी एट OVO अरीना वेम्बले ऑन संडे. और ये तारीख है जी 20 दिसंबर. टिकट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. लखविंदर वडाली लाइव इन कॉन्सर्ट. पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली फ्राइडे 16 अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लॉ और संडे 18 अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम. सुनील ग्रोवर जो बात एक मुश्किल या संजीदा बात को भी ऐसे करते हैं कि आपको हंसी आती है और जिंदगी खराब हो गई और इस पर भी लोगों को हंसी आती है. सो कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट OVO अरीना फैमिली ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर एट लेस्टर एट मेटियोरी अरीना ऑन सैटरडे 31 अक्टूबर. टिकट्स लेने के लिए AXS इवेंट प्राइड एंड टिकट मास्टर. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो नेटवर्क. कविता कृष्णा मूर्ति लाइव और इसके लिए आप इनको परफॉर्म करता देख सकेंगे सुन सकेंगे लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर. ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एट अ दिवाली स्पेशल. टिकट फ्रॉम वेन्यू बॉक्स ऑफिस. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. रागासान लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासान. डिटेल्स एट LeicaRadio.com. So ये कुछ मालूमात आप तक पहुंचा दी.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: A season of fun and family times you don't want to miss. But it also brings flu, RSV and other viruses that can lead to serious illness and even time in hospital. Thankfully, vaccines are the safest way to keep everyone protected, from little ones and teens to older people and those who need extra care, like if you're pregnant. Find out more about who can get the winter vaccines and how. Search NHS GM Winter Vaccinations. That's NHS GM Winter Vaccinations.
4: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963

0: अच्छा शब्द दीक्ष आफ्ताब शिवदसानी की फिल्म संगीत आपके लिए प्ले किया है, क्या यही प्यार है 2002 की फिल्म थी। और अभी लाइव को भी वो उनका आपको बताया कि एंटरटेनमेंट की जब न्यूज़ आप तक पहुंचाई तो बहुत से लोग बहुत से काम कर रहे हैं, उसमें आफ्ताब शिवदासानी भी हैं। बिल्कुल डिफरेंट हीरो की तरह, जैसे आम हीरो की एक कन्वेंशनल कहना चाहिए तारीफ होती है या डेफिनेशन होती है, बिल्कुल हटके हैं। राज फिल्म अगर आपको याद हो तो उसमें ऐसी एक्टिंग थी कि इंसान को उसे वो बुरा लगने लग जाता है क्योंकि ज़बरदस्त एक्टिंग थी। और अगर आपको याद है उसके गीत भी राज फिल्म के सभी सब अच्छे थे लेकिन एक्टिंग क्या ज़बरदस्त थी। तो मैसेजेस मिल रहे हैं एक्चुअली, बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया हुसैन आपका मैसेज, शुक्रिया बहुत। गीत भी आपको अच्छा लग रहे हैं और कुछ कहानी का भी आपको बड़ा अच्छा लगा सुनना, आपने आज पहली दफा सुना, नो वरीज जी, आप सुनेंगी तो मंडे ट्यूसडे हम 3:30 पर आपके लिए एक शॉर्ट हाफ स्टोरी पेश करते हैं। सो आज ट्यूसडे है तो आज सेकंड लास्ट डे था उसके लिए, और फिर कोर्ट ऑफ द डे होती है जो कि वेंसडे एंड थर्सडे आपके लिए होती है। And it's more than a court of the day because इसमें हम थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करते हैं और किसकी कोर्ट है वो भी बताई जाती है। एनीवे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी जाने का वक्त है तकरीबन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको 128.24 इंडियन रुपीज मिलेंगे 1 pound के एक्सचेंज में। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Passports, tickets, kids' tablets.
5: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
4: And checking in with grandma.
5: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
4: That's why I got SIMZY. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
4: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Holiday sorted.
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. SIMZY, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SIMZY.com. Terms apply.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: Hamari rakshak hai wo.
10: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
11: Mujhe jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai?
10: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.
7: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
12: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
13: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
14: Rizkan, next with Drive.
15: Leica Radio.
14: Leica Radio, Greater Manchester.
0: और यहाँ पर ये एक आपको गीत सुनवाने का इरादा भी है और इख्तितामी बात भी करने का ख्याल है, तो वहाँ पर ये भी आपको बता दूँ कि आज भी रिश की जगह जेजैब प्रोग्राम करेंगे और मेरी आपसे कल मुलाकात होगी। रुबीना खान को आज के द मैगजीन शो से इजाजत दीजिए। बाय फॉर नाउ।
14: Leica Radio, The Magazine Show with Rubina Khan. The Northwest with Leica Radio Greater Manchester and the South with Leica Radio Greater London. We are your Leica Radio Network.

0: क्लासिक फाइंड की है और ब्रॉट इट आउट. इट्स नियरली 41 इयर्स ओल्ड फ्रॉम द फिल्म साहिब. आई एम नॉट गोना गिव यू द ट्रैक, बस थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा गाना हो जाए, थोड़ा सा कारियोकी हो जाए, बिकॉज़ यू प्रोबब्ली इन द कार इफ यू ड्राइविंग होम. लेट्स कॉल इट कारियोकी. एंड आपके साथ मैं सिंग करूंगा, स्टूडियो में डांस करूंगा, आप भी थोड़ा सा गाड़ी में थोड़ा सा मस्ती कर ले. अगर आप घर में सुन रहे हैं तो घर में मस्ती कर ले. लेट्स डू इट. आर यू रेडी? क्लासिक स्वीपर.
1: आई लाइक योर रेडियो क्लासिक प्लेज नाउ.
0: हां जी, याद आ गया. 1 2 1 2 लेट्स गो.

0: Micah.
1: Gorgeous song, Shreya Ghoshal, Nihal Toro, Ye Prem Molya. और लास्ट आवर में अगर आपको जबरदस्त पसंद आया था ये जो क्लासिक स्वीपर है, तो इस घंटे वाला जो आपको जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त गाना है, और जिस तरह

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: हाय, मैं रुबीना खान। सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।

0: at the Golga Pianda Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Jay Zabe on Leica Radio.

0: Jay-Z on Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: Long delays as you head westbound of the M62 tonight. We've got a lane out after a multi-vehicle accident around junction 12 where you meet up with the M60 at Eccles. Westbound the M62, not very much better coming back in over the Pennines. 23 at Huddersfield through to 22 at Rishworth Moor. Heading back towards Manchester in the M60. There's been an accident that's now on the hard shoulder. Anti-clockwise, the M60, not very much better. A lane out there after an accident approaching junction 11 at Barton. With congestion all the way back to junction 15 at Swinton. Also fairly slow approaching the Swinton into change southbound the M61. You've got queues of about 15 minutes there through the concrete tunnels. And busy out of Manchester on Mancunian Way from Ancoats through to Salford. That's the latest.
0: Drive is sponsored by Pepe's. Download the Pepe's app. The chance to win prizes with every order. You can now receive 25% off after every 6 orders. T's and C's apply. Leave a review to be in with a chance to win a £100 Pepe's voucher. This is Leica.
3: Hanji, kaisa laga ye? Pakistan here to the hour. Kaho ek din. Ye gana, pata nahi kaise dobara meri khayalon mein aa gaya tha last week. Aur uske baad aane ke baad ja hi nahi raha. Itna khubsurat gana hai. Ahmed Jahan Zaib ki khubsurat awaaz. Aur ye time bhi sir, mere khayal mein thoda sa different tha time. It's a classic track really, isn't it? Lekin itna khubsurat gana hai. Nan dan dan dan dan dan. बड़े इसके इंटरेस्टिंग नोट्स हैं और इसी तरह की पहले जो क्लासिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो भी बड़े जबरदस्त. तो इसी तरह आपकी प्लेलिस्ट आपकी है और हमारी है और यू लव इट आई लव इट. और इसी तरह की प्लेलिस्ट और मस्ती के साथ देखें टाइम कितनी जल्दी गुजरता है. टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैविंग फन एंड वी हेडिंग टुवर्ड्स 7 o'clock ऑलरेडी. आई हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू ड्राइव यू होम इन स्टाइल एंड आई नो दैट बिकॉज आपके लवली लवली मैसेजेस आते जाते रहते हैं और आते रहते हैं लाइक अ लवली स्ट्रीम ऑफ स्प्रिंग ऑटम वाटर. दैट्स व्हाट हैपेंस एंड आई ट्राई एंड शेयर द सेम एनर्जी. चलें अभी थोड़े मैसेज की तरफ चलते हैं उसके बाद अलविदा करेंगे आपके साथ. एंड मेक श्योर यू स्टिल कीप इट लॉक्ड ऑन लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड वेस्ट यॉर्कशायर एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर अनीसा नसीर अनीसा जीज बिग शो एज वेल.
4: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
7: सुबह का नाश्ता हो दोपहर का लंच या शाम का डिनर सब कुछ एक ही जगह बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी पाए निहारी मगज पराठे और बिरयानी साथ ही लजीज डिजर्ट्स फालूदा शेक्स कड़क चाय कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट हर वक्त हर जायके के लिए.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
1: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet,
9: Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
9: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
12: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Next, Anisa Nazir with The Big Show.
14: Leica Radio.
13: Jay Zabe on Leica Radio.

0: और मैं क्या कहूँ, ला ला ला ला ला ला, मेरा भी दिल चाह रहा है ला ला ला कहने को, क्योंकि हमेशा ही की तरह आज भी मनु जी ने, मेरा ख्याल है भी मुकेश जी ने पूरा एक जुमला भी मुंह से नहीं निकाला होगा, जवाब भिजवा दिया और नतीजा वही कि जवाब गलत है। गीतों में कुछ ना कुछ कॉमन है और वो क्या कॉमन है वो आपको बूझना है, बहुत से लोग बूझ भी रहे हैं। अभी मुझे मौका नहीं मिला है कि मैं देख पाऊं किसने सही और किसने गलत जवाब भिजवाया है अब तक, तो कुछ ही देर में ये राज हम खोलेंगे और बताएंगे कि किसका जवाब सही है और किसका जवाब गलत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Hanisa Nasir, live across Greater Manchester with The Big Show. Like a radio. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and lychee chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: लंदन, गेट रेडी फॉर अनफॉरगेटेबल night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल, Auto protected.

0: Feel Good Track was brought to you by LycaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Lyca Radio app and website on LycaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Lyca Radio.
2: कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। आपसे मेरे सितारे नहीं मिलने वाले, आपसे मेरे सितारे नहीं मिलने वाले, जैसे दरिया के किनारे नहीं मिलने वाले। लोग जितने भी यहाँ उर्दू जुबान बोलते हैं, उनको अंदाज तुम्हारे नहीं मिलने वाले। लड़खड़ाते हुए ये जान लिया था मैंने, तेरी बाहों के सहारे नहीं मिलने वाले। उनकी फूलों से शनासाई नहीं हो सकती, जिनको रुखसार तुम्हारे नहीं मिलने वाले। और इस तखारे से तो लगता है कि इस बार हमें इस मोहब्बत में खसारे नहीं मिलने वाले। That's a good news. The only bad news is कि अगर मनु जी और उमर जी का जवाब दोनों का एक कर दिया जाए तो ये जवाब सही हो सकता है। वैसे अलहदा अलहदा तो मनु जी का भी गलत है और उमर जी का भी गलत है। और इन्हीं पर बस नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह मकबूल साहब आपका भी गलत है। जिशान जी, सरोज जोशी जी, आफ्ताब गिल जी, नीलेश जी, फवाद जी, अमित पटेल जी, मिसेज के विजय गुडोरी जी, फरजाना जी, रानी जी, दीनी जी, जिनको पूरा यकीन था कि आज वो रानी बनेंगी, जिंकिया जी, आप सबके जवाब गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ दो सही जवाब मुझे मिले हैं सही। और मतलब आप लोग क्यों इतनी गहराई में जा रहे हैं, जरा गौर तो करें आप। मतलब अब बहुत सारे गीतों में उन चीजों का जिक्र ही नहीं है जिनको आप मेंशन कर रहे हो। एक गीत में था तो इसका ये थोड़ा मतलब है कि वो थीम है। कुछ आई समझ? मंजीत संगर जी, यू आर द रानी ऑफ द आवर। और चौधरी फरीद अहमद जी, यू आर द राजा ऑफ द आवर।
0: रेडियो
2: और तमाम राजाओं और रानियों के लिए एक मैसेज के फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स जो हैं वो है लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो अरीना ऑफ वेम्बली में ऑन संडे 27 सितंबर। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद स्टूडेंट प्री शो जो कि शुरू होगा 5 PM और ये चलेगा 5:45 PM तक। एंड देन द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट जल्दी से बंदोबस्त कर लीजिए diwalistory.com के जरिए।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
4: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,

0: चीज। आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: क्रैंकिंग आउट द बिगेस्ट हिट्स फॉर द कैपिटल, दिस इज लाइका।

0: अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को, अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को। बयान करने को जब कोई दास्तां भी नहीं, जमीन पैरों से निकली तो ये हुआ मालूम, हमारे सर पे कई दिन से आसमां भी नहीं। और आप लोग ना जाने क्यों इतने लंबे चौड़े बखेड़ों में पड़ रहे हैं। दो मासूम मासूम से अल्फाज हैं जिन्हें पूछना था, और तोची जी आपका भी जवाब मैं सही नहीं मान सकती। और डॉक्टर राजदीप जी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से, देहरादून से हमारे साथ इस वक्त निभा रहे हैं हमारा साथ, बेहद शुक्रिया। और मुझे इजाजत दे रहे हैं कि आई कैन कॉल हिम राज। राज जी बहुत सारे राज हैं यहाँ पर, हमारे अपने बॉस भी राजी हैं, तो मैं आपको डॉक्टर राजदीप ही कहूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इतनी मतलब मुझे लिफ्ट करवाने के लिए बेहद शुक्रिया। गुरसरनजीत जी, डॉक्टर साहब आपका भी जवाब सही नहीं है। गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, सोहबत खान जी और प्रतिभा जी, चलें प्रतिभा जी मान लेती हूँ।
1: Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 127.4 Indian rupees, 86.4 Afghan Afghani, 369.5 Pakistani rupees, 163.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: The gold is currently trading at £105.08 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: जवाब गलत होने की सूरत में माजरत करने की हरगिज हरगिज जरूरत नहीं है। अरे ये तो बस ऐसे लाइट हार्टेड सा एक फीचर है, बस ये जानने के लिए कौन कौन सुन रहा है और कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन ध्यान से नहीं सुन रहा। लाइक अ गोल की नशिया तनीसा नासिर आपके साथ मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 7 and 10 PM, और मेरे साथ आप सब, बेहद शुक्रिया।

और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे आईने तरस जाएंगे, अर्श के दीदाए नमनाक से बारी बारी सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। चांद और सितारे सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन था। दिलीप सरोज जी, शहजाद वट जी, फायजा खान जी और एक दो नाम और भी हैं, सलमा जी, संध्या जी, शकीला नेडा जी, किरित जी, वीना जी, आपके जवाब सही हैं। दिनेश जी, शगुफ्ता जी, आपके जवाब आते अधूरे हैं तो नहीं मान सकती, लेकिन थैंक यू सो सो सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।

0: चाहते वक्त वफा नींद भरोसा गजलें, चाहते वक्त वफा नींद भरोसा गजलें, ऐसा क्या था जो तेरे सर से न वारा हमने। तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। गॉड एंड गन फिल्म का नाम था, एंड गाने वाली आवाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली कुमार सानू जी। और डॉक्टर राजदीप जी, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, हमने आपका नाम भी लिया, हमने आपका मैसेज भी मेंशन किया और हमने आपको बदनाम भी किया। हमारे यहाँ इसको बदनाम करना कहते हैं जब आपका जवाब गलत होता है। वो प्यारी क्या, वो साथी क्या जिसमें बदनामी ना हो, हम तो ये मान के चलते हैं। तो बेहद शुक्रिया, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। कहते हैं आधा जवाब मेरा सही था, बिल्कुल, इसीलिए तो सही नहीं माना उसको, क्योंकि पूरा जवाब चाहिए होता है। और बस जो एक जवाब आ जाता है फर्स्ट टाइम, वो ही, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और शायरी वाला वादा मैंने आपसे किया था कि आपकी भिजवाई शायरी शामिल करूंगी, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जिंदगी दे और मुझे थोड़ा सा टाइम भी दे।
1: Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees today. Toh bhooliyega nahi, exchange in branch, online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भई ये क्या मजाक है, इजाज़ जी कह रहे हैं मैं बिजी हूँ क्योंकि घर में फैमिली आई है, फ्रेंड्स आए हैं, रिश्तेदार आए हैं आई थिंक, और मिल्टन कीन्स से आपने ये भी बता दिया, आया कौन है उसे बता तो दें। बहने भाई चले जो भी आया है कोई बात नहीं, मेहमान रहमत होते हैं। तो हमारी संध्या जी कह रही है कि मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ लेकिन सुन रही हूँ। ये तो कोई मजाक ना हुआ भाई कि बिजी हैं। बट सर मुझे आपका मैसेज समझ में नहीं आया, तो जरा खुल के बताइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। और लीजिए अब ये चंद अल्फाज, इन्हें नोट कीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये कौन सा गीत है। और जवाब सही ना होने की सूरत में अपोलोजाइज करने की हरगिज जरूरत नहीं है, मैं उस्तानी थोड़ी हूँ कि ओ सॉरी टीचर सवाल गलत हो गया जवाब नहीं आया। इट्स ओके, वैसे मतलब मैं रोब ऐसे ही डालती हूँ जैसे उस्तानियां डालती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, राख कर जाए प्यार की दुनिया जी सकेगा, राख कर जाए प्यार की दुनिया जी सकेगा।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Anisa Nasir with The Big Show. Leica Radio. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu Properties. 11, 11.
5: 11.
6: Hamari rucksack hai wo.
7: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
8: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
7: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Or email sales@leicamedia.co.uk.
2: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
2: High appreciation.
9: In Dubai.
10: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
1: This is Leica Radio. Greater Manchester. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
11: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
11: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
11: Leica Radio.

0: The Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: एक जादू है सभी का, कई मंत्र लेकिन सब्ज गूं हैं, कहीं नीली कहीं भूरी आंखें, उसको पहलू में बिठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। और ये भी एक फरमाइशी गीत है, जी हाँ, किसी ने मांगा था मुझसे रिसेंटली, मैं सुनवा नहीं पाई और आज मौका देखते ही मैंने ठा करके सुनवा दिया। लीजिए दोस्तों, ठा करके तो मुझे जवाबात भी मिलने हैं, एंड आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू दैट डॉक्टर राजदीप जी फ्रॉम देहरादून, He is the Raja of the Hour. सबसे पहले आज हमारे उल्टे पुल्टे को उन्होंने ही बुझा है। कमाल हो गया भी, कमाल हो गया, राजा बनना मुबारक हो आपको। अनिल जी, गीता हर्ष जोशी जी, अजिंकिया जी, गुरसरन जी जी, रजनीश जी, उल्लास जी और गुल जी। गुल जी, आप तो वाकई में गुल खिलाने लगे हो आज।
0: This is Laika Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही 0208-574-8410. Southall Travel is, याद रहे, ATOL protected हैं।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: ये है
1: Laika Radio. अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Laika Gold Radio, Laika Radio ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Laika Radio मिडलैंड्स पर।

0: कभी कभी मुझे इतना दिखाई देता है, कभी कभी मुझे इतना दिखाई देता है, हर एक तरफ तेरा चेहरा दिखाई देता है। मैं उससे दूर भी भागूं तो कितनी दूर भला, वो जितना दूर हो उतना दिखाई देता है। तुम्हें मैं प्यार भी तो मेरी जान करता हूँ, तुम्हें तो बस मेरा गुस्सा दिखाई देता है। तुम्हारे सीने पर सर रख के सो रहा था मैं, मुझे भी ख्वाब में क्या क्या दिखाई देता है। तू खुद को एक नजर देख और मुझको भी, जो जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। कभी कभी मुझे इतना दिखाई देता है, हर एक तरफ तेरा चेहरा दिखाई देता है। निजी बात करते हैं उल्टे पुल्टे की और दोहरा भी देते हैं, शायद कुछ लोग और भी कोशिश करना चाहें, राख कर जाए प्यार की दुनिया जी सकेगा। और अब तक डॉक्टर राजदीप जी ने बूझा, अनिल जी ने गीता, हर्षित जोशी जी ने, अजिंक्या जी ने, गुरसरनजीत जी ने, रजनीश जी ने, उल्लास जी ने और गुल जी ने। एजाज जी को शायरी अच्छी लगी, मेहमानों से छुपके आ गए हैं क्या, उनको भी लगाई लाइन पे, उनसे की रेडियो सुना करें, बड़ा स्वाब होगा। रेडियो भी सुनना चाहिए भाई, दिल बहलाने के लिए कभी कभार वो क्या कहते हैं, चेंज ऑफ सीनरी और चेंज ऑफ ऑडियो भी होना चाहिए हर वक्त। बीवी है तो खावन की सुनते रहो, खावन है तो बीवी की सुनते रहो, कभी कभी मेरी भी सुना करें। जी हाँ, और लीजिए मेरी भी सुनिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाय अनिल कपूर जी, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार जो है ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 369.9 Pakistani rupees, 127.5 Indian rupees, 86.5 Afghani, 163.9 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
0: The gold is currently trading at £105 and 0.08 pence per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: LEICA Radio.
0: और लीजिए दोस्तों, मैं किसी ना किसी बहाने फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ, जैसे कि पंजाबी तड़के में भी पसंद है ये गीत सईदा जी का, उन्होंने भी पिछले दिनों मुझसे मांगा था और मैं सुनवा नहीं पाई। तो लीजिए, कल हमने मलिका तरन्नुम नूरजहां जी के कितने प्यारे प्यारे गीत सुने, बाली जी ने भी सुनवाए आफ्टरनून में, शाम में रही सही कसर मैंने पूरी की। मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि आइंदा भी ये कसरें इसी तरह निकालती
1: रहूं। And LEICA Radio mobile app.
3: Punjabi Tadka with Anisa.

0: क्या बात है, क्या प्यारी फरमाइश है सईदा जी आपकी। आई होप कि आपने सुन ली होगी, और अगर सुन ली तो रसीद जल्दी से भिजवा दीजिए। और संध्या जी कह रही है मेरी फरमाइश सुनवा दीजिएगा, तो मैं पूछ रही हूँ कौन सी फरमाइश। तो कह रही है कल ही तो बताया था। अरे बहन, मुझे ये नहीं पता कि मैंने सुबह खाया क्या था। वैसे आज तो कुछ खास खाया भी नहीं, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि कल क्या भेजा था आपने। चलो आपने भिजवा दी दोबारा से, बेहद शुक्रिया। समझा करो ना, आप अभी नहीं समझते। राजदीप जी आप भिजवा दो, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, काम बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आप भिजवाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी शामिल करने की। और इस गीत को लेकर जासब, वैसे मेहमान मतलब मुसरत साहिबा, उनको चाय वाय दे रही होंगी और आप आंख बचा कर निकल आए इधर। कहते हैं क्या प्यारा गीत है, वजाहत अतरे जी के, वजाहत अतरे जी की धुन, ख्वाजा परवेज जी के बोल होंगे, नन्ना जी एजाज और मुमताज, अंजुमन सुल्तान राही जी, बिल्कुल बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये, और उसी का ये बहुत ही प्यारा एवरग्रीन सॉन्ग सईदा जी ने सुनना चाहा था कल, और मैं कल शामिल नहीं कर पाई। तो ऐसी नालायकियां तो मैं करती रहती हूँ, कौन सी नई बात है। और जहां तक हमारे उल्टे पुल्टे का सवाल है, कमल शिवनानी जी और मीनाक्षी ब्राह्मण जी, आपने भी बूझ लिया है कि कौन सा गीत है, कुछ ही देर में मैं शामिल करने जा रही हूँ। और कमल जी को तो काफी शिकवा है कि जिसने ये गीत लिखा उसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। वैसे आपस की बात है कमल जी, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, बद्दुआ नहीं देते, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते।
1: Lisa Nasir, live across Greater Manchester with the Big Show. Like a radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October, and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com. Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Punjab, the biggest tunes.

0: कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछने मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। लेकिन अक्सर जो तय हुआ होता है वो होता नहीं, ऊपर वाले के अपने ही प्लान्स होते हैं। भाई फरमाइशों के लिए मुझे लग रहा है कि एक घंटा बहुत कम पड़ रहा है, तो क्या ख्याल है 2 घंटे ना कर दिए जाएं, ट्यूसडे टू थर्सडे 2 घंटे आपकी फरमाइश। यस यस यस, मुझे आवाजें आ रही हैं। अब देखिए ना, पूरा नेक्स्ट आवर जो है वो फुल है, तो अब मुझे हरप्रीत जी वैंकूवर में सुन रही है, उनका गीत अभी सुनवाना पड़ रहा है।
1: The biggest Asian hits in Greater London and now Greater Manchester. This is your Leica Radio.
2: जाने क्यों

0: मेरा साया। ये था फिल्म का नाम, 1966 की फिल्म। गाने वाली आवाज वन एंड ओनली मलिका तरन्नुम नूर जहां जी की, और फरमाइश करने वाले वन एंड ओनली गीता जी, गीता जी और हर्षद जोशी जी। आप दोनों के नाम गया ये प्यारा सा गीत, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था। हाय वो एक शख्स, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे, जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, दोनों से हाल दिल का छुपाना पड़ा मुझे, फिर जिसके बाद मिलने का इम्कान ही ना था, पॉसिबल ही नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं मिलने की, फिर जिसके बाद मिलने का इम्कान ही ना था, आखिर वो फैसला भी सुनाना पड़ा मुझे, इस बार हौसले से जो गम उसके सह गई, एहसान जिंदगी का उठाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। हम जान तो नहीं मांग रहे आपकी, लेकिन नुकसान आपसे जी, आप बेंच पर खड़ी हो जाए, आपके घर में कोई तो होगा ना बेंच, अगर बेंच नहीं है तो कुर्सी पर ही खड़ी हो जाइए। मतलब क्यों क्यों आखिर क्यों आज इतनी बेवफाई क्यों दिखाई आपने? प्रोग्राम के फाइनल आवर में ठुमक ठुमक चलती हुई आ गई, जैसे मैं कुछ कहूंगी नहीं, मैं और कुछ ना कहूं, रुखसाना जी नॉट पॉसिबल। एनीवेज कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और भी काम है दुनिया में अनीसा को सुनने के सिवा, लेकिन आप मेरा टाइम किसी को मत दिया करें प्लीज। मैंने पहले भी कितनी बार समझाया, आप समझते ही नहीं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.3 today Indian rupees. Or agar aapko yaad ho, to nahi hai, to main yaad dila deti hu. Don't forget to change in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और वो जो मैंने कहा कि आपके फरमाइश के लिए दो घंटे जो हैं वो आपके नाम कर दिए जाएं ट्यूसडे टू थर्सडे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा मैं अपना फैसला वापस ले लूंगी।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Anisa Nasir with The Big Show.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities.
3: A whole universe of entertainment.
4: Sunil
5: Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
8: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
8: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410.
3: Safo Travel. Auto protected.
9: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
1: Leica Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Cool aur online suno leicagold.com pe.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम वन एंड ओनली कविता कृष्णमूर्ति जी आर्टिस्ट ऑफ द वीक। हजारों दिल में छुपे हों हमारे खार मगर चेहरे पर तो कम अज कम गुलाब रखते हैं। आपके आ रही हैं शहर में लाइव परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, आपको मजीद मैं तफसील बता देती हूँ ताकि आप उन्हें जाकर जरूर सुने लाइव। लेजेंड है कविता कृष्णमूर्ति जी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। परफॉर्म करेंगी लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, और आप तक उनको लेकर आ रहे हैं सनातन इवेंट्स वाले एज अ दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: दिस इज लाइका रेडियो,
2: ग्रेटर मैनचेस्टर। फील गुड ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, डाउनलोडेड फ्रॉम iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस।
1: This is Leica Radio,
2: Greater Manchester.
1: Leica Radio.
0: Santhiya ji, are you there?

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: आपके फरमाइशी गीतों का सिलसिला चल रहा है आपके अपने इलाका गोल्ड पर रनी सनासिर के साथ पूरे 10 बजे तक का साथ है आपका और मेरा संध्या भावसे जी गीत सुनने के लिए और रसीद भिजवाने के लिए बेहद शुक्रिया और बिल्कुल सही कहा जहीर खान साहब आपने वो पंजाबी की कहावत है कहना तीनों ते सुनाना नूनू तो जो मैंने रुखसाना अफजल जी को कहा ना उसका ज्यादा इशारा आपकी तरफ भी था तो अक्लमंद को इशारे काफी होता है तो आप तो खुद समझदार हैं आप समझ गए लेट से आने पर कहते कोई इमोजी नहीं मिला जिसमें कान पकड़े हूं तो खाली कान और फिर हाथ भिजवा देते एनीवेज नहीं नहीं इस तरह माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेहद शुक्रिया आप सुन रहे हैं साथ निभा रहे हैं बकरियों को मेरी हेलो कह दीजिएगा प्लीज याद से भूलिएगा ना
0: ये है लाइका रेडियो
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। किसी इंसान को अपनी मौत का पता नहीं है कि उसने कब इस दुनिया से जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जिंदगी का सफर क्या सफर है। भारती जी, आपके इस बहुत ही प्यारे से फरमाइशी गीत ने थोड़ा उदास कर दिया। कहते हैं यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, खुद हम मिट्टी के हैं और फना होने से डरते हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 127.5 Indian rupees, 86.4 Afghan afghani, 369.8 Pakistani rupees, 163.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: The gold is currently trading at £105 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और इससे पहले कि मेरी नाजुक से दिमाग से बात निकल जाए, मुझे दिलीप सरोज जी आपसे सॉरी करना है, अपोलोजाइज करना है, क्योंकि आपका भी जवाब सही था प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन मैं नालायक, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा छोटा सा मुन्ना सा, और मैं आपका नाम मेंशन नहीं कर पाई। आई होप कि आप महसूस नहीं करेंगे, तो हो जाती है, बंदा बशीर हूँ, कभी भूल चुक हो जाती है। Obviously, आज फॉर सम रीजन आई एम सो वेरी टायर्ड एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो होम एंड स्लीप। अब आपको दिल की बात नहीं बताऊं तो किसको बताऊं, है ना। वैसे चले फिर चलते हैं लॉलीवुड।
1: फ्रॉम लॉलीवुड विद लव विद अनीसा।

0: लीजिए भी आपसे प्यार करते करते प्यार भरी बातें प्यार भरे गीत सुनवाते सुनवाते तीन घंटे कब कहाँ बीत जाते हैं. मंडे टू फ्राइडे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता है. और ये सब क्रेडिट जो है वो आप ही को जाता है, आपके प्यार को, आपकी सपोर्ट को. हर रोज मोहब्बत की मैं तजदीद करूंगा, हर रोज मोहब्बत की मैं तजदीद करूंगा. दिन एक मोहब्बत का मुकर्रर नहीं करते, वो एक ही होता है फकत एक जहां में. हर शख्स का इस दिल में तकर्रुर नहीं करते. लीजिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है, बशर्ते जिंदगी मंडे में लौट के. मंडे क्या हो गया अनीसा, भाग्य थकी हुई हूँ. कल इंशाल्लाह शाम 7 बजे मैं फिर हाजिर होती हूँ आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में. मेरे जाने के बाद लाइका के जो गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक है, जिसे सैंडी जी हैंड पिक्ड कहते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हैंड पिक्ड है, उसे जरूर इंजॉय कीजिएगा. काजल सुबह हाजिर हो जाएंगे, आजकल वो डबल ड्यूटी दे रही है, सुबह भी और ड्राइव टाइम शो में भी आपका साथ निभाती है. इसी तरह हमारे पूरे नेटवर्क में जो जो जहां जहां आपका साथ निभा रहा है, उसका साथ निभाइए और उन्हें शुक्रिया का मौका दीजिए. तो मैं जाऊं, दो फरमाइशें बाकी है. जिंकिया जी जाना नहीं, शब बख़ैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवा.
1: Leica Radio. This is Leica Radio, Greater Manchester, Bradford, Huddersfield and Leeds. This is Anisa Nasir with The Big Show. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
1: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel, at all protected.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: इट्स अ डॉग वॉक. आई डू इट एवरी डे एट होम. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
6: Hey, boy!
7: Coast Guard, we're stuck.
8: Okay, help's on its way.
7: Hold on, mate.
9: Shoes, tide, phone.
7: Back before dark, love. Okay.
10: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
1: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio. Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound.
11: Leica.
12: Hey, this is Riz Khan, and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.

0: Jamaica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
0: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.